नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप और मैं हूं आज आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति। दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो, पुरानी दोस्तों की महफिल हो या फिर ऑफिस की थकान, बिल्कुल एक चीज है जो हर पल को खास बना देती है, वो है चाय। तो दोस्तों, आज मौका भी बेहद खास है क्योंकि 21 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है इंटरनेशनल टी डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। लेकिन दोस्तों, भारत में सिर्फ चाय जो है एक पेय नहीं बल्कि एक एहसास है, आदत है और तो और कई लोगों के लिए तो जिंदगी की छोटी सी खुशी भी है। तो चलिए दोस्तों, चाय की खुशबू और संगीत की मिठास के साथ शुरुआत करते हैं आज के सफर की।

0: पड़ते।
1: बिल्कुल दोस्तों, पाँव जमीन पर पड़ेगी कैसे, क्योंकि हमारा जो ध्यान होता है हर वक्त चाय की खुशबू में होती है। तो दोस्तों, भारत में शायद कोई ऐसा घर होगा जहां दिन की शुरुआत चाय से ना होती हो। कई लोगों के लिए तो सुबह की पहली चाय ही दिन भर की ऊर्जा बन जाती है। किसी के हाथ में कुल्हड़ वाली चाय तो किसी को अदरक वाली चाय बेहद पसंद होती है, और तो और किसी को इलायची की खुशबू वाली चाय। कोलकाता की गलियों में मिट्टी के कुल्हड़ में मिलने वाली चाय का स्वाद ही अलग होता है। वहीं दार्जिलिंग की चाय पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादक देशों में से एक है। असम, दार्जिलिंग जैसी जगहों की चाय विश्व भर में पसंद की जाती है। लेकिन चाय सिर्फ स्वाद नहीं देती, कई बार रिश्तों को भी जोड़ती है। चलो एक कप चाय हो जाए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि बातचीत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है। और दोस्तों, कुछ यादें ऐसी होती है जो हमेशा चाय की खुशबू के साथ जुड़ी रहती है, चाहे वो कॉलेज की कैंटीन हो या दोस्तों के साथ देर रात तक की बातें, बारिश के मौसम में पकोड़े और चाय, या फिर माँ के हाथ की सुबह वाली चाय। कई बार एक छोटी सी चाय की प्याली रिश्तों में मिठास घोल देती है। और भारत में कोई भी घर या बल्कि परिवार और दोस्तों के बीच जब दिल की बातें भी अक्सर चाय के साथ होती है। अगर मैं सच कहूँ तो कई अधूरी कहानियां भी चाय के कप के साथ पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, स्टूडियो में समय हो चला 10:16 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप अपनी दोस्त ज्योति के साथ, सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। तो दोस्तों, बातों और गीतों का सिलसिला यूं ही चलने वाला है ठीक सुबह के 11 बजे तक। तो दोस्तों, यूं ही सुनते रहिए, साथ बने रहिए मेरे साथ, सिर्फ और सिर्फ नॉनस्टॉप गपशप में।

अब दोस्तों जब मौसम दीवाना हो ही रहा है तो फिर चाय की प्याली भी कहाँ दूर रहने वाली है। बिल्कुल, तो दोस्तों भारत जितना विविधताओं से भरा है उतनी ही अलग अलग यहाँ की चाय भी है, जैसे कि असम टी, गाढ़ी और मजबूत स्वाद वाली, दार्जिलिंग टी, हल्की और खुशबूदार, कश्मीरी कहवा, केसर और मेवों से बनी खास चाय, और गुजरात की मसाला चाय, मसालों की खुशबू से भरपूर, और बंगाल की कुल्हड़ चाय, मिट्टी की सौंधी खुशबू वाली। भारत की हर जगह की चाय अपने साथ वहाँ की संस्कृति और अपनापन लेकर आती है, और आजकल तो ग्रीन टी और हर्बल टी भी काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं और चाय को नए तरीके से अपना रहे हैं। दोस्तों अगर सही मात्रा में चाय पिए जाए तो इसके कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि चाय शरीर को तरोताजा महसूस कराती है, ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, अदरक वाली चाय गले और सर्दी में राहत देती है, इलायची और तुलसी वाली चाय तनाव कम करने में मदद करती है। लेकिन हर चीज की तरह चाय भी संतुलित मात्रा में ही अच्छी होती है। बहुत ज्यादा चाय पीना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं माना जाता, तो चाय का आनंद ले, लेकिन संतुलन के साथ।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: One, two, one.

को लेते हुए वह हंसी भी हमारे मन तक पहुंच जाती है। और दोस्तों, बॉलीवुड फिल्मों में भी चाय का अपना अलग ही अंदाज रहा है। कई फिल्मों में चाय के बहाने प्यार की शुरुआत हुई, तो कहीं दोस्ती गहरी हुई, तो कहीं दिल की बातें सामने आई। पुराने फिल्मों से लेकर आज की फिल्मों तक चाय हमेशा आम जिंदगी की निशानी बनकर दिखाई देती रही। और सच पूछिए तो संगीत और चाय का भी साथ जो है वो बहुत ही कमाल का होता है। एक हाथ में चाय और कानों में मधुर गीत, बस फिर क्या चाहिए।

दोस्तों भारत में कई प्रकार की जो चाय है वो उनका अलग ही मज़ा होता है। कई लोग तो चाय पीते पीते ही सबसे अच्छे आइडिया सोच लेते हैं। कुछ लोगों के लिए नो टी नो वर्क बिल्कुल सच है। और कई घरों में मेहमान आते ही पहला सवाल होता है, चाय लेंगे? यानी कि चाय सिर्फ पेय नहीं, हमारी मेहमान नवाजी और अपनापन भी है। तो दोस्तों स्टूडियो में समय हो चला है 10:45 और 8 सेकेंड और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप अपनी दोस्त ज्योति के साथ सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। आखिरकार ये दिल से दिल तक का जो रिश्ता है, तो चलिए दोस्तों जब चाय की बातें हो रही है तो फिर इस गीत को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। तो चलिए अगले गीत की ओर। कौन सा गीत है चलिए आपको सुना देती हूँ।

107 FM रेनबो पर स्वागत करती है आपकी दोस्त तीन का तड़का में। जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सविता और पूरे एक घंटा हम और आप रहने वाले हैं और तीन का तड़का में कुछ कुछ तड़के लगेंगे, तो बस रहिएगा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: हाँ दोस्तों, आपकी दोस्त सविता तीन का तड़का में एक बार फिर से करती है आपका स्वागत, अभिनंदन। और गानों के साथ एंटरटेनमेंट का तड़का तो लगेगा ही, लेकिन पहले आपके लिए परियोजना प्रस्तुति। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में लागू हो रही हैं सरकारी योजनाएं, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, उज्ज्वला योजना। तो आज भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई अनेक योजनाओं में से हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की। दोस्तों, विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ 17 सितंबर 2023 को 13,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों की अवधि के लिए किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों, शिल्पकारों को पूरी सहायता प्रदान करना। इस योजना का लक्ष्य कारीगरों और शिल्पकारों, उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना तथा विश्वकर्माओं को घरेलू और वैश्विक मूल्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और सभी से जोड़ना है। इसके फायदे ये हैं कि इस योजना से कारीगरों और शिल्पकारों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों को मान्यता मिलेगी। साथ ही कौशल उन्नयन होगा, 5 से 7 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिनों या उससे अधिक का उन्नत प्रशिक्षण, जिससे प्रतिदिन 500 रुपये का वजीफा दिया जाएगा। टूल किट प्रोत्साहन भी मिलेगा। बुनियादी कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत में ई बाउचर के रूप में 15,000 रुपये तक का टूल किट प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, ऋण सहायता मिलेगी बिना किसी गारंटी के, 3,00,000 रुपये के उद्यम विकास ऋण 2 किश्तों में दिए जाएंगे। और पहली किश्त जो मिलेगी वो 1,00,000 रुपये की और दूसरी 2,00,000 की होगी, जिनकी अवधि 18 महीने और 30 महीने होगी। इस प्रकार से इन ऋणों पर 5% की रियायती ब्याज दर लागू होगी, जिसमें भारत सरकार की ओर से 8% तक की सब्सिडी दी जाएगी। दोस्तों, बुनियादी प्रशिक्षण पूरा कर चुके लाभार्थी 1,00,000 रुपये तक की ऋण सहायता की पहली किश्त का लाभ उठाने के पात्र होंगे। दूसरी ऋण किश्त उन लाभार्थियों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने पहले

किश्त का लाभ उठाया है, एक मानक ऋण खाता बनाए रखा है और अपने व्यवसाय में डिजिटल लेन देन को अपनाया है या उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसके अलावा डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, एक रुपये की राशि जमा की जाएगी खाते में प्रति डिजिटल लेन देन में, जो प्रति माह अधिकतम 100 रुपये लेन देन तक सीमित होगी। और इसके अलावा दोस्तों, विपणन सहायता कारीगरों और शिल्पकारों को गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, GEM जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर पंजीकरण, विज्ञापन, प्रचार और अन्य विपणन गतिविधियों के रूप में विपणन सहायता प्रदान की जाएगी ताकि मूल श्रृंखला से उनका जुड़ाव बेहतर हो सके। साथ ही यह योजना भारतभर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा। इन व्यवसायों में शामिल हैं बढ़ई, नाव निर्माता, कवच निर्माता, लोहार, हथौड़ा और औजार निर्माता, ताला निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाला, मोची, जूते बनाने वाले, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, नारियल बुनने वाले, गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, नाई, माला बनाने वाले, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले। दोस्तों, नामांकन हम कैसे करें इसके बारे में आपको बता देते हैं कि लाभार्थियों का नामांकन PM विश्वकर्मा पोर्टल पर आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा। लाभार्थियों के नामांकन के बाद 3 चरणों में सत्यापन किया जाएगा, जिसमें ग्राम पंचायत UL-B स्तर पर सत्यापन, जिला कार्यान्वयन समिति द्वारा जांच और सिफारिश, स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुमोदन शामिल होगा। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा के दिशा निर्देश प्रधानमंत्री पोर्टल पर देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने परियोजना प्रस्तुति में बात की विश्वकर्मा योजना की, तो लाभ जरूर उठाएं इस योजना का, और साथ में जो नहीं जानते उनको भी ये जानकारी देने की पूरी कोशिश करें।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: culture.
1: जी हाँ दोस्तों, कोलकाता कल्चर की तरफ हम अब आगे आगे बढ़ रहे हैं और FM रेनबो 107 पर आपकी दोस्त सविता आ गई है लेकर कार्यक्रम 3 का तड़का। दोस्तों, आपके शहर में क्या खास होने जा रहा है, आइए आपके साथ साझा कर लेते हैं। हमारी बहनें और दोस्त बहुत सुन रही हैं कि महिलाओं के शरीर का एक प्राकृतिक और सामान्य जैविक चक्र है जो उन्हें गर्भ धारण के लिए तैयार करता है। इस दौरान गर्भाशय की परत टूटकर रक्त के रूप में बाहर निकलती है। दोस्तों, मासिक धर्म से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पीरियड्स आने से कुछ दिन पहले हॉर्मोन्स के बदलाव के कारण पेट में ऐंठन होती है, थकान होती है, सिर दर्द होता है और मुहासे, मूड स्विंग्स जैसी समस्याएं होती हैं। संस्कृतियों में इसे अशुद्ध माना जाता है क्योंकि इससे जुड़ी कुछ मिथक हैं, कुछ वर्जनाएं हैं जो कि हमारी संस्कृति में इसे अशुद्ध मानना बताती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक केवल मिथक है, यह एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है और इसके दौरान महिलाओं को सामान्य जीवन जीने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।

0: बस इतनी ही सी बात आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या खास आपके शहर में होने वाला है। दोस्तों, आपको संवाद और जागरूकता की एक सशक्त शाम के लिए आमंत्रित करता है फाउंडेशन एक हम अमार मेय बेला का आयोजन करके। यह एक विशेष पैनल चर्चा है जो मासिक धर्म, स्वास्थ्य और साइकिल जागरूकता पर केंद्रित है। यह आयोजन कई उपलब्ध महिलाओं को एक साथ लाता है ताकि जो वर्जनाओं को तोड़ सके तो उन्हें तोड़ा जा सके, महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारियां साझा की जा सके और नारीत्व की यात्रा का उत्सव मनाया जा सके। तो ये कहाँ होने वाली है परिचर्चा और ये आयोजन? दोस्तों, स्थान है रविंद्र तीर्थ न्यू टाउन, समय 5 बजे और तिथि है रविवार 7 जून। तो अमार में वेला को बदलाव का एक मील का पत्थर बनाना चाहते हैं तो अवश्य इसमें शामिल हों और जानें कि किस तरह की जो मिथक हैं, वर्जनाएं हैं, मासिक धर्म को लेकर उन्हें कैसे तोड़ा जा सकता है। बात बस इतनी सी है।
1: कोलकाता कल्चर।
0: मैं हूं आपके साथ सविता और पूरे 4 बजे तक रहूंगी। 3 का तड़का मैं 107 FM रेनबो पर।

0: आज के दिन। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन के सेगमेंट की ओर बढ़कर हम आ पहुंचे हैं। भारतीय और विश्व इतिहास की ओर 21 मई के दिन कौन सी वो घटनाएं घटी जो हमेशा के लिए दर्ज हो गई इतिहास में, साझा कर लेते हैं आपके साथ। 21 मई 1216 में फ्रांस के राजकुमार लुई ने इंग्लैंड में प्रवेश किया। 1840 में न्यूजीलैंड ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा बन गया। 1843 में स्विस वकील, राजनयिक, राजनीतिज्ञ और नोबेल पुरस्कार विजेता चार्ल्स अल्बर्ट गोबार्ट का जन्म हुआ। 1851 फ्रांसीसी राजनेता लियोन बोर्जुआ का जन्म हुआ, जिन्हें शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1860 डच चिकित्सक, शरीर क्रिया विज्ञान विशेषज्ञ और नोबेल पुरस्कार विजेता विलियम आइन थोवेन का जन्म हुआ। इसके अलावा दोस्तों 1934 में स्वीडिश जैव रसायनज्ञ और नोबेल पुरस्कार विजेता बेंट इंगमार सैमुएलसन का जन्म हुआ। 1935 में अमेरिकी सामाजिक कार्यकर्ता, समाजशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता जेन एडम्स का निधन हुआ। दोस्तों आज के दिन कुछ खास दिन भी मनाए जाते हैं और जिनमें मुख्य खास दिन है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। प्रत्येक वर्ष 21 मई को भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य आम लोगों की पीड़ा को उजागर करके और यह दर्शाकर कि आतंकवाद और हिंसा राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक है, युवाओं को आतंकवाद और हिंसा से दूर रखना है। तो आज के दिन के सेगमेंट की ये खास बात है।
1: आज के दिन
0: चलिए बढ़ते हैं तीन का तड़का में एक और तड़का लगाने, और उस पार बॉलीवुड न्यूज भी तो है, तो जाना कहीं नहीं।

जी हाँ दोस्तों, ये सच है कि बिन आपके हमारा शो अधूरा है। और तीन का तड़का बिल्कुल दोपहर को खाना वाना खाने के बाद रिलैक्सेशन में सुना जाता है, तो लगता है ना कि कुछ कुछ खास खास और अलग अलग तड़के भी मिलते रहें, क्योंकि सादा सिंपल जो खाना है ना रोज़ रोज़ अच्छा नहीं लगता, उसमें कुछ कुछ मसाले अलग अलग तरह के तड़के लगते रहे, कुछ तीखा कुछ खट्टा कुछ मीठा और कुछ जी हाँ झाल झाल वाला यदि मसाला हो और उस खाने में दिया जाए कई बार चेंज करने के लिए, तो बेहतर होता है और स्वादिष्ट भी लगता है। इसीलिए हम भी कोशिश करते हैं कि गानों के साथ कुछ कुछ खास खास लेकर आते रहें। दोस्तों वेलकम टू द जंगल का निर्माण फिरोज ए नाडियावाला ने बेस इंडस्ट्रीज ग्रुप के बैनर तले किया है और इसका निर्देशन अहमद खान ने किया है और ये फिल्म 26 जून 2026 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। अब हम आपको बताएं इस फिल्म का जो वेलकम टू द जंगल का टीज़र एक नकली फिल्म की कहानी पेश करता है। अक्षय कुमार की फिल्म है जो जंगल में अराजकता में तब्दील हो जाती है और बड़े पैमाने पर रोमांच के लिए फ्रेंचाइजी के हास्यप्रद मूल को विस्तार देती है। दोस्तों इसका टीज़र 15 मई को जारी किया गया, जिसमें वेलकम फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म की पहली झलक दिखाई गई। यह संकेत मिलता है कि कॉमेडी फिल्म एक नकली फिल्म के बिगड़ जाने के इर्द गिर्द घूमती है। फुटेज से पता चलता है कि यह एक अराजक बहुआयामी कहानी है जो कि जिसमें बहुत अधिक कॉमेडी है, भ्रम है और इससे जुड़ी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो अव्यवस्थित होकर के एक कन्फ्यूज़न टाइप का क्रिएट करती हैं। दोस्तों वेलकम थ्री के नाम से भी जाने जाने वाली एक फिल्म 2007 में आई वेलकम फिल्म से शुरू हुई कॉमेडी फ्रेंचाइजी की वापसी का प्रतीक है। इस फिल्म के शुरुआत की चेतावनी के साथ शुरू होती है कि इस फिल्म के निर्माण में किसी भी जानवर का इस्तेमाल नहीं किया गया है सिवाय कुछ घोड़ों और कुछ हम जैसे गधों को छोड़कर। तो आने वाली आपके शहर में रिलीज़ होने वाली है, बस इंतज़ार कीजिए जल्दी ही आ जाएगी। अब बात करें यदि हम कृष्णा अवतारम भाग वन की, तो हृदयम की विशेष स्क्रीनिंग में भाग लिया। यह स्क्रीनिंग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा पिछले सप्ताह लखनऊ में विशेष स्क्रीनिंग के बाद राज्य में फिल्म को कर मुक्त घोषित करने के कुछ दिनों के बाद आयोजित की गई। फिल्म निर्माताओं के अनुसार हेमा मालिनी ने पूरी फिल्म देखी और इसकी भव्यता, कहानी कहने का तरीका, अभिनय और दृश्य प्रस्तुति की सराहना की। तो स्क्रीनिंग के बाद उन्होंने वीडियो कॉल पर निर्देशक को बधाई भी दी, साथ में उनके जो फिल्म में संगीत है, हाथ से पेंट किए गए परिधान है, हस्त निर्मित आभूषणों की भी प्रशंसा की। दोस्तों फिल्म निर्माताओं ने जानकारी दी है कि फिल्म खाड़ी देशों समेत कई अन्य देशों में भी रिलीज़ हो चुकी है। यह फिल्म लेखक राम मोरी की पुस्तक सत्यभामा से प्रेरित है। पिछले सप्ताह लखनऊ के लोकभवन सभागार में आयोजित विशेष स्क्रीनिंग में राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के अलावा मंत्रीगणों ने भी इस फिल्म को देखा। बात हम कर रहे थे कृष्णा अवतारम की। इसके बाद हम एक और फिल्म की बात करेंगे, बॉलीवुड न्यूज़ है, लेकिन पहले

जी हाँ दोस्तों, देखिए 47 मिनट कब गुजर गए पता ही नहीं चला, और वक्त इतनी तेज़ी से दौड़ता है कि हमारी जो कुछ कुछ बातें होती हैं, बहुत सारे गीत होते हैं, वो कुछ कुछ रह ही जाते हैं। ऐसा अक्सर हमारी ज़िंदगी में भी होता है दोस्तों। डे टू डे की लाइफ में आप सुबह से शुरुआत कर देते हैं और उस शुरुआत में लगातार आप लगे रहते हैं, जल्दी जल्दी समय के हिसाब से काम को करते हैं, फिर भी ऐसा लगता है ना कि एट लास्ट कुछ बाकी रह गया। तो यही तो ज़िंदगी है और यही ज़िंदगी का मज़ा है, क्योंकि कुछ बाकी रहना ही हमारे दूसरे दिन को बदलता है एक और नए उत्साह में, उमंग में। तो बस हम भी इसी सोच के साथ दूसरे शो के लिए चले आते हैं या चले जाते हैं कि ठीक है, आज जो बात अधूरी है वो फिर कल कहेंगे। दोस्तों बात कर रहे थे एक और बॉलीवुड न्यूज़ की, वो ये कि राजकुमार हिरानी ने अपनी पहली वेब सीरीज़ पीटर एंड पेड्रो का टीज़र रिलीज़ कर दिया है। साइबर क्राइम कॉमेडी और थ्रिलर के मिक्स के साथ आ रही इस सीरीज़ में अरशद वारसी, विक्रांत मैसी और मोना सिंह नज़र आएंगे। ख़ास बात ये है कि इसी शो से राजकुमार के बेटे वीर हिरानी एक्टिंग डेब्यू कर रहे हैं। मुन्नावाई, थ्री इडियट्स, पी के जैसी फिल्में बना चुके फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी अब OTT डेब्यू करने जा रहे हैं। राजकुमार हिरानी बतौर क्रिएटर अपनी पहली वेब सीरीज़ पीटर एंड पेड्रो के साथ तैयार हैं। हाल ही में उन्होंने इस वेब सीरीज़ की रिलीज़ डेट शेयर की थी और अब इसका टीज़र भी आ चुका है। हिरानी के लिए ये शो इसलिए भी ख़ास है क्योंकि इसमें उनके बेटे वीर हिरानी की एक्टिंग डेब्यू होने जा रही है, और पीटर एंड पेड्रो का टीज़र बता रहा है कि ये शो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। क्या है पीटर एंड पेड्रो का प्लॉट और क्यों ये दिलचस्प लग रहा है, ये सीरीज़ क्यों इतनी दिलचस्प होगी, ये तो आप देखेंगे इस सीरीज़ को तभी जान पाएंगे। फ़िलहाल तो एक गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में।

107 FM रेनबो 3 का तड़का में मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त सविता। बिल्कुल दोस्तों, फिलहाल तो अब आपसे विदा लेने का वक्त आ चला है, लेकिन जाने से पहले आखिरी गीत तो आपको सुनवाना है और मैं कोई गया वक्त नहीं जो लौट के फिर ना सकूं। बिल्कुल आने वाली हूँ चाय एंड क्लासिक्स में 5:20 पर FM गोल्ड यानी खरा सोना पर हमारी आपकी मुलाकात होने वाली है, तो सुनना ना भूलें। और 7 छाया लोक 107 FM रेनबो पर फिर से हाजिर होंगी। तो हम मिलते हैं चाय पीने के बाद, फिर से चले आते हैं, तो जाना कहीं नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेकर आना है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

जी हाँ दोस्तों, जिसका था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। मुझे भी था बहुत प्यार कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ छाया लोक में आ जाऊँ और आपसे मुखातिब होते हुए ढेर सारी बातें तो हो, लेकिन रोमांटिक और खूबसूरत नगमों की भी बरसातें हमारे और आपके बीच हो। दोस्तों वेरी गुड इवनिंग, 107 FM रेनबो छाया लोक में आपकी दोस्त सविता करती है सभी दोस्तों का स्वागत कार्यक्रम छाया लोक में। और आज जी आज क्या है आपको याद है, मुझे पता है

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: जी हाँ दोस्तों, बड़ी ही चाहत से, बड़ी ही हसरत से हम तो बस आपके आने का इंतज़ार करते हैं और उम्मीद है कि आप सब जुड़ चुके होंगे हमारे साथ। और आज है क्या, आज है थर्सडे और थर्सडे के दिन होता है नज़ारा फिल्मों का।
1: नज़ारा फिल्मों का।
0: तो दोस्तों, गुजरे जमाने से कई यादें हमारी जुड़ी होती हैं। इन यादों में

0: में सिनेमा भी एक अहम हिस्सा है, खास तौर से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर का हिस्सा। तब एक दौर था, फैंस के लिए जो एक्टर थे ना, वो भगवान से कम नहीं थे। राजेश खन्ना हो या फिर देवानंद, जी हाँ, इनकी एक झलक पाने के लिए फैंस कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते थे। फैंस की दीवानगी इस हद तक थी कि इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी एक्टर को ब्लैक शर्ट पहनने से मना कर दिया गया, तो किसी की कार गुजर जाने पर वहाँ की मिट्टी उठाकर लड़कियाँ अपनी मांग में भर लिया करती थी। उफ, क्या क्रेज़ था हिंदी सिनेमा के उस दौर का और उस समय के स्टार्स का। वैसे तो आपको पता होगा कि वो कौन सा स्टार था जिसको कि ब्लैक शर्ट पहनने के लिए मना कर दिया गया था, यानी उनकी दी। वो इतने स्मार्ट और हैंडसम लगते थे। बातें करते करते हम इस पर चर्चा करेंगे और आप में से कोई भी बताना चाहेगा तो बताएंगे और हम सुनेंगे। दोस्तों, फिल्म के सेट के साथ भी जुड़े ऐसे कई किस्से हैं। कई बार किसी दृश्य के साथ बड़ी ही कॉमिक टाइमिंग है, तो कभी डायलॉग डिलीवरी ऐसी है जो हमारे दिलो दिमाग पर रह जाती है। तो आपका क्या ख्याल है, हम कुछ ऐसी ही बातें करें? जी, मैं तो सजा कर लाई हूँ पूरी प्लेलिस्ट, और ऐसी ही कुछ दृश्यों की बात, कुछ ऐसे ही सेट्स की बात, कुछ ऐसे ही कलाकारों की बातें करेंगे, मैं करूँगी। लेकिन यदि आप भी कुछ खास बताना चाहें तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल तो एक गीत।
1: Thank you.

0: जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर एक बार फिर से स्वागत करती है, अभिनंदन करती है छायालोक में आपकी दोस्त, क्या नाम है मेरा, चलिए देखते हैं हमारा नाम किसी को याद है या नहीं। जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे श्रोता, देखते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, हाँ आपका नाम क्या है? पायल बनर्जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, बताओ कैसी हो?
1: हाँ भालो अच्छी, तुम्हें भालो तो?
0: हाँ मैं अच्छी हूँ, बताओ क्या कहना चाहती हो?
1: हाँ हाँ सब ठीक ठाक अच्छे।
0: अच्छा क्या कहना है बोलो?
1: आज के टॉपिक पे एक तो रिपीट कर दीदी, एक्चुअली हिंदी टा हमारे एक तो प्रॉब्लम, तो
0: टॉपिक है नज़ारा फिल्मों का। आज हम छाया लोक में बात करते हैं कि बहुत सारे दृश्य होते हैं या फिर कोई ऐसा सीन होता है जो तुम्हें याद रह जाए या फिर जिसके बारे में चर्चा करना चाहो वो बता सकते हो।
1: एक बार एक तो रिपीट कर, एक्चुअली एक तो आट के जाते, एक तो बोल बे।
0: हाँ कोई बात नहीं, हम एक फिल्म है जिसके बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे। आज की जो बहुत सारी फिल्में ना, फिल्में बन रही हैं, हमको याद रहती हैं कि ये फिल्म इस कारण से अच्छी थी, ये फिल्म संगीत के लिए अच्छी थी या ये फिल्म गाने के लिए अच्छी थी, तो ऐसी कोई फिल्म तुम्हारे दिमाग में है?
1: अच्छा मैंने एमन कोनो एक्टर फिल्में सीन बोल छो जेटा अमर भालो लगे थे।
0: हाँ
1: ओके, तो আমি অ্যাকচুয়ালি বলবো দিদি ভিড়জারার কথা, ঠিক আছে? তো ভিড়জারাতে যে লাস্টের সিনটা ছিল, যে ওদের লাস্টে যে দেখাটা হলো, মানে জেল থেকে বেরোনোর পর যে দেখাটা হলো দুজনে হিরো আর হিরোইনে, তো সেই মোমেন্টটা আমার ভালো লেগেছে। কেন বলবো দিদি, মানে একটা লাভ বা একটা ভালোবাসা কতটা লং লাস্টিং হলে একদম শেষ মুহূর্ত অব্দি মানে দুজন দুজনের জন্য অপেক্ষা করা যায়, সেটাই তো দেখিয়েছে লাস্টে, তো সেই লাস্ট মোমেন্টটা আমার খুব ভালো লেগেছে।
0: वीर जारा का जो लास्ट दृश्य था वो तुम्हें बहुत अच्छा लगा, तो पायल आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: हेलो
0: हाँ बोलो।
1: ओके दीदी আমি একটা লাইন গান শোনাচ্ছি তোমাকে।
0: हम पायल लोगों से औरों से भी इंतजार कर रहे हैं, लोगों के कॉल आ रहे हैं, तो हम फिर अगली बार सुनते हैं, ठीक है? तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ी थी अभी पायल और हम बात करना चाहते हैं, फिलहाल जो मैं मेरे दिमाग में एक है फिल्म बेताब। बेताब एक राहुल रवेल और धर्मेंद्र ने फिल्म बनाई थी सन्नी देओल को लॉन्च करने के लिए, और जब इसकी तैयारी शुरू हुई तो उस समय में उनके दिमाग में ये था कि कोई ऐसी एक्ट्रेस रखी जाए जिसका जो कि एक फ्रेश फेस हो, चूँकि सनी देओल भी पहली बार फिल्म में आ रहे थे, उनका भी डेब्यू था, तो धर्मेंद्र ने एक एक्ट्रेस की खोज की जो कि फ्रेश फेस के रूप में वो लॉन्च करना चाहते थे, और इस मूवी के लिए बहुत सारी एक्ट्रेस की तलाश जारी हुई, मगर मेकर्स थे कि उनको कोई चेहरा ऐसा भा नहीं रहा था, इसके लिए उन्होंने कई लड़कियां देखी, लेकिन अंत में धर्मेंद्र और राहुल की नज़र पड़ी जिस लड़की पर, जानते हैं, वो थी अमृता सिंह, और अमृता सिंह किसकी बेटी थी? तत्कालीन राजनेता संजय गांधी की सहयोगी रुखसाना सुल्तान और सुखविंदर सिंह विक्र की बेटी थी अमृता सिंह। अमृता सिंह की खूबसूरती ने मेकर्स को आकर्षित किया और बन गई वो बेताब की हीरोइन। फिल्म के लीड स्टार कास्ट फाइनल होने के बाद धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के पहलगांव से 7 किलोमीटर दूर शेषनाग झील के स्थान से मशहूर एक घाटी थी शेषनाग। जी हाँ, वहाँ पर उन्होंने सेट लगाया बेताब का और वहाँ पर इसकी शूटिंग हुई। पहाड़ों और वनस्पति

पत्तियों से घिरे ये हरियाली घाटी सनी देओल की इस फिल्म के बाद बेताब घाटी के नाम से मशहूर हो गई। और मौजूदा समय में यदि आप कश्मीर जाते हैं तो बेताब घाटी घूमने के लिए अवश्य जाएंगे, क्योंकि पर्यटकों के लिए ये एक फेवरेट स्थान बन गया है और यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग वेकेशंस मनाने के लिए जाते हैं।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: जी हाँ दोस्तों, ये आकाशवाणी है और हमारे दोस्तों की सुरीली बातों की भी खूबसूरत वाणी है जो हमें सुननी है फोन कॉल पर। और जुड़ चुके हैं हमारे एक श्रोता, तो देखिए वो दोस्त क्या कहते हैं। हेलो,
2: गुड इवनिंग सविता जी।
1: गुड इवनिंग जी, आपका नाम बताइए।
2: मैं मुनिरुद्दीन लश्कर बात कर रहा हूँ, दक्षिण सांकरे लावड़ा से।
1: मुनिरुद्दीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बताइए कैसे हैं पहले, और फिर क्या कहना चाहते हैं।
2: सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतना बेहतरीन गाना बजाने के लिए और मनपसंद टॉपिक लाने के लिए।
1: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पसंद आया और आपको क्या कुछ शेयर करना है?
2: ऑफकोर्स,
1: हाँ,
2: आप मौका दिया और मैं शेयर नहीं करेंगे
1: जी।
2: देखिए सविता जी, काफी दिन पहले मैं छोटा 1983 का फिल्म है और जो अवतार फिल्म है,
1: अवतार
2: वो राजेश खन्ना और शबाना आजमी का,
1: बिल्कुल
2: उनका दो लड़का था और छोटा लड़का पढ़ाई लिखाई के बाद और तो होने वाले ससुर राजेश खन्ना को बोला जे वो छोटा लड़का को घर जमाई रखने के लिए। तब जो राजेश खन्ना जो बात किया वो आज हमारे दिल में है और शायद काफी लोगों दिल में है। तो राजेश खन्ना तब बोला, जब बोला वो घर जमाई के थक रखने के लिए, तो राजेश खन्ना बोला जे जन्म के बाद उस छोटा लड़का को सीने पर लिख दिया है, इट इज नॉट फॉर सेल।

0: ये जो एक बात ये सब लड़का को होना चाहिए, पिता माता हमारे लिए कितना कोशिश करके कितना मेहनत करके हमारे बड़ा करा है।
1: बिल्कुल,
0: ये इस ये जो बात है ये हमारे दिल छू गया है। तो इसी की फिल्म का जो एक गाना था, दिन महीने साल गुजर है, ये जो भी गाना आपका पैसा है तो प्लीज सुना दीजिए।
1: जी मनोरुद्दीन जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। आज के समय में माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ, मतलब आजकल क्यों, हर वक्त ही, हर समय ही, तभी यदि आज बच्चे यदि मुख ना मोड़ते तो शायद वृद्धाश्रम ना होते, है ना।
0: माता पिता लड़को लड़की के लिए सब है
1: जी,
0: वो आप जीवन देने के लिए तैयार है, इसीलिए हमारे माता पिता को उसी तरह सम्मान करना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो मनोरुद्दीन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप,
0: थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, आप सुस्त रहे, मस्त रहे, थैंक यू, बाय।
1: बिल्कुल, बाय।

0: दोस्तों दिन महीने साल तो गुजर रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ स्टूडियो में सेकंड्स और मिनट गुजर रहे हैं और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि घंटा भी गुजर ही जाएगा। तो जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं हमारे दोस्तों से। देखें जुड़ रहे हैं हमारे दोस्त। हेलो
1: जी, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग जी, आपका नाम बताइए।
1: जी मैं पारस पंडित चुचरा हुगली से बोल रहा हूँ।
0: पारस पंडित जी, जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही प्रोग्राम सुंदर हो रहा है,
0: आपको पसंद आ रहा है, इसके लिए हम शुक्रिया अदा करेंगे आपको कि आप लोग जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है।
1: जी मैं तो प्रोग्राम एकदम नियमित रूप से सुनता हूँ और प्रोग्राम बहुत ही, आप लोग का जितने भी प्रोग्राम होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं
0: जी। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, आप नज़ारा फिल्मों के बारे में।
1: नज़ारा फिल्मों में मैं एक ही फिल्म का बात करना चाहता हूँ जो कि द ग्रेट गैम्बलर पिक्चर में अमिताभ बच्चन और जीनत अमन जो एक गाना फिल्माया गया था इटली के वेनिस के वो नदी में जी, वो बहुत ही मन लुभावन और बहुत ही सुंदर दृश्य था
0: जी।
1: और इसके अलावा आराधना पिक्चर भी में भी वो जो मेरे जीवन मेरे सपनों की रानी कब आएगी, ये इस पिक्चर का मैंने इस गाने का शूटिंग दो पार्ट में हुआ था और एक पार्ट जो राजेश खन्ना जी जीप पर और सुजीत कुमार के साथ थे तो वो तो दार्जिलिंग में हुआ था शूटिंग, और शर्मिला जी का जो रेल वाला शूटिंग था वो शूटिंग मेरे ख्याल से शायद स्टूडियो में हुआ था क्योंकि उस समय शर्मिला जी का वक्त नहीं था और ये शूटिंग दो पार्ट में हुआ था।
0: तो आपने हमारे साथ बड़ी अच्छी एक जानकारी शेयर की। और पारस पंडित जी मैं आपको बताऊं कि जो आपने पहली वाली फिल्म की बात की वेनिस में जो सीन फिल्माया गया था वो मुझे भी बहुत पसंद था और वो मेरा एक सपना था कि काश मैं वहां जाऊं।
1: और एक चीज जानते हो, इटली का जो मतलब जितने भी हेरिटेज है जी, वो मतलब यूनेस्को के लिस्ट में सबसे ज्यादा है।
0: हाँ बिल्कुल,
1: जैसे एक पिसा का मीनार है, उसके बाद कल ही हम देखे एक जो मतलब कोलोसियम, वो कोलोसियम जहाँ पर ग्लेडिएटर लोगों का
0: बिल्कुल
1: मतलब युद्ध कौशल दिखाया जाता था, तो रोमन साम्राज्य का वो बहुत ही बड़ा ही मैंने ऐतिहासिक जगह है
0: बिल्कुल। तो मैं आपके साथ यही बताना चाह रही थी कि भगवान कभी कभी आपकी इच्छा कैसे पूरी करता है कि मेरा सपना था वहां जाने का और मैं एक बार वहां जा पाई, जानते हैं आप।
1: अच्छा अच्छा अच्छा दीदी,
0: तो मैं तो
1: आप बहुत ही मतलब भाग्यशाली और खुशनसीब हैं दीदी जो आप विदेश घूम आई।
0: मतलब वो जगह मैंने फील की और वो

0: कोलोसियम की जो बात कर रहे हैं वो भी मैंने देखा, तो ये एक बड़ा ही खूबसूरत इत्तेफाक था, ईश्वर की कृपा थी, तो आपने मेरी यादें ताजा कर दी पारस जी, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: और मैं दीदी सुनिए ना, और मैं तो बिहार का हूँ, तो नालंदा में जो जॉनी मिलर नाम का शूटिंग हुआ था वो जगह भी मुझे बहुत पसंद।
0: हाँ हाँ, और पता है आपको, आप जिसकी बात कर रहे हैं वो भी मेरी आज की लिस्ट में शामिल है, वो फिल्म।
1: इट्स वेरी नाइस,
0: बिल्कुल कोइंसिडेंस है। तो मैं आपको दो लफ्जों की है दिल की कहानी सुनवाती हूँ।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट।
0: गुड नाइट।
1: ओके
0: ओके।

0: अमोरे मियो दोवे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा।

0: जी हाँ, दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी। कबीरदास जी ने भी तो कहा है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बिल्कुल दोस्तों, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक दोस्त, देखें वो क्या कहते हैं। हेलो हेलो
1: सुविता जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, आपका नाम बताइए।
1: जहाँ जाता हूँ होती है हलचल, प्यार से लोग कहते हैं मुझे श्याम कुमार चंचल।
0: चंचल, बिल्कुल चंचल जी हैं, और आपका मन तो कहीं चंचल नहीं है।
1: चंचल तो है,
0: है अच्छा
1: है चंचल।
0: चलिए अच्छा है, चंचल है तो।
1: और सुविता जी आप कैसे हैं बताइए पहले।
0: मैं एकदम बढ़िया हूँ और मस्त रहती हूँ, और आप लोगों से जब मुलाकात होती है, बातें होती है, तो और भी अच्छी हो जाती हूँ।
1: बस हमें भी बहुत अच्छा लगता है
0: जी। बताइए क्या कहना चाहते हैं।
1: मैं कहना चाहता हूँ कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे डॉक्टर बी नेगरेटी। इनकी एक पिक्चर थी फिल्म राम और श्याम।
0: हाँ।
1: तो इसमें दो भाइयों की कहानी है। दिलीप कुमार जी उसमें डबल रोल में हैं। ये कहानी मुझे बहुत पसंद आई थी। एक भाई होटल में खाता है और दूसरे को पे करना पड़ता है, मतलब फूल से उसको पकड़ लेते हैं और बोला तुमको पे करना पड़ेगा। तो ये कहानी थी फिल्म की, दो भाइयों की। तो एक दूसरा करता है, दूसरे को भरना पड़ता है।
0: हाँ, सही बात है।
1: तो कहानी थी, और इसी फिल्म का एक गीत मैं सुनना चाहता हूँ सविता जी।
0: कौन सा?
1: प्यार का जमाना आया दूर हुए गम, राम की लीला रंग लाई श्याम ने बंसी बजाई। ये गीत मैं आपसे सुनना चाहता हूँ।
0: मैं कोशिश करती हूँ, और आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। तो हमारे साथ चंचल जी जुड़े, और उन्होंने राम और श्याम फिल्म की बात की, और राम और श्याम फिल्म की बात के साथ हमने एक और फिल्म हम अपनी प्लेलिस्ट में लेकर आए थे। मैं उनका पसंदीदा गीत अवश्य सुनवाना चाहूँगी, लेकिन फ़िलहाल बात करूँगी, एक फिल्म आई थी वक्त, शायद आपको याद हो, यश चोपड़ा की। कलाकार थे सुनील दत्त, राजकुमार, शशि कपूर, साधना, बलराज साहनी, शर्मिला टैगोर और रहमान, अचला सचदेव, ये सब कलाकार थे इसमें। और ये मल्टी स्टारर फिल्म काफ़ी हिट हुई थी। इसमें सब कुछ वो तत्व थे जो एक लोकप्रिय फिल्म बनाने के लिए की जाती है। लेकिन इसकी एक ख़ास बात जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये कि निर्देशक यश चोपड़ा ने फिल्म में राजा का जो किरदार था वो पहले धर्मेंद्र को ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने बड़े भाई का रोल करने से मना कर दिया। तो राजकुमार साहब ने इस फिल्म का मैं ये रोल किया बड़े भाई का। और शायद आपको पता है या नहीं पता, शायद आपको मालूम हो कि 1965 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी पिक्चर वक्त की मलयालम रीमेक कोलिलाकम के नाम से जब फिल्म बननी शुरू हुई, तो उस फिल्म में उन दिनों मलयालम सिनेमा के एक सुपरस्टार थे जयन, वो काम कर रहे थे। और फिल्म के क्लाइमैक्स की शूटिंग

हो रही थी और वो उस समय में हेलीकॉप्टर की रेलिंग पकड़कर खड़े हुए थे। तभी हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ गया और हेलीकॉप्टर ज़मीन से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। और जैन की भी उस सीन की शूटिंग के दौरान दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, वक्त के दिन और रात, वक्त के हर शय पर राज, ये जब गीत बजता है तो लगता है कि सच में वक्त का कोई भरोसा नहीं।

जी हाँ दोस्तों, 107 FM रेनबो छाया लोक में एक बार फिर स्वागत करती है आपकी दोस्त सविता। कार्यक्रम छाया लोक में आज हम बात कर रहे हैं फिल्मों के नजारे की। पूरा एक घंटा बीत चुका है और एक घंटा बाकी है, पता ही नहीं चला वक्त कब गुजर गया। दोस्तों, कुछ खास बात यदि हम आपके साथ शेयर करें तो हमारी बहुत सी महिलाएं, बहुत सी हमारी दोस्त भी ये सूचना, ये खबर सुन रही हैं और ये प्रोग्राम सुन रही हैं। तो महिलाओं के शरीर का एक प्राकृतिक और सामान्य जैविक चक्र है जो उन्हें गर्भ धारण के लिए तैयार करता है, उसमें है मासिक धर्म यानी पीरियड्स। इस दौरान गर्भाशय की परत टूटकर रक्त के रूप में बाहर निकलती है। पीरियड्स आने से कुछ दिन हमारे हार्मोन्स के बदलाव के कारण पेट में ऐंठन, थकान, सिरदर्द, मुहासे, मूड स्विंग्स जैसी समस्याएं होती हैं। कई संस्कृतियों में इसे अशुद्ध माना जाता है। ये ऐसे मिथक हैं जो वर्जनाएं समझते हैं और मानते हैं, और ये नहीं मानते कि ये एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है। तो इसके दौरान महिलाओं को कई बार सामान्य जीवन जीने में परेशानी होती है। तो बस नहीं, ये सब मिथक हैं, वर्जनाएं हैं। इनके बारे में जागरूकता देने के लिए, संवाद करने के लिए एक सशक्त शाम अमार मेवेला का आयोजन किया जा रहा है। तो इसके लिए वहां पर जाकर जागरूकता हासिल की जा सकती है। यह आयोजन कई उपलब्ध महिलाओं को एक साथ लाता है ताकि वर्जनाओं को तोड़ा जा सके, महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारियां साझा की जा सके और नारीत्व की यात्रा का उत्सव मनाया जा सके। स्थान है रविंद्र तीर्थ न्यू टाउन, शाम 5 बजे और तिथि है 7 जून रविवार। जाकर आप अपनी समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं।

0: नजारा फिल्मों का।
1: तो आइए नज़ारा फिल्मों का में आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक दोस्त। देखें वो क्या कहते हैं, उसके बाद हम आपसे बातें करने के बाद एक गीत सुनवाएंगे। हेलो हेलो हेलो, हमारे दोस्त। हेलो
2: हेलो,
1: हाँ आप कौन बोल रहे हैं?
2: गुड इवनिंग जी, मैं जीतू बोल रहा हूँ विक्रा से।
1: जीतू जी, जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं
2: जी। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपका जो प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा हो रहा है, गाने भी अच्छे अच्छे बज रहे हैं आज।
1: चलिए आपको पसंद आए तो बहुत अच्छी बात है।
2: और आज का जो टॉपिक है फिल्मों नजर
1: जी,
2: तो ऐसे बहुत सारे फिल्म मतलब ऐसे है तो बहुत मतलब कई फिल्मों का नाम मैं नहीं लूंगा, दोनों से मतलब एक फिल्म है, फिल्म का नाम है मैं अमर प्रेम।
1: अमर प्रेम जी, बहुत अच्छी फिल्म है
2: जिसमें नजर आए थे राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर। और उस फिल्म में जो एक गीत है चिंगाड़ी कोई भर के, तो ये फरमाया गया था आपका शूटिंग मतलब हुआ था आपका ये हावड़ा ब्रिज के वही नदी में के नाव में सवार जो है राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर। तो ये वाला जो गीत है चिंगाड़ी कोई भर के बहुत ही अच्छा लगा, शूटिंग का जो नज़ारा था वो भी बहुत ही अच्छा लगा हमें। और क्योंकि इससे हम यही देख पाते हैं क्योंकि वो फिल्म आया था 1972 में और उस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तो उस समय का जो है कैसा था मतलब जैसे कि हावड़ा ब्रिज का सीन और उस समय का नदी है ना गंगा।

0: वो देखने में कैसा लग रहा था, तो वो तो हम नहीं देख पाए थे, है ना, मेरा जन्म तो वो है बाद में। तो इस फिल्म के जरिए हम देख पा रहे हैं, गीत के जरिए हम देख पा रहे हैं अपने हावड़ा ब्रिज और उस नदी को कि पहले के समय में कैसा था।
1: बिल्कुल।
0: और अभी के समय में तो है, तो हम लोग जो है जाकर देख ही लेते हैं लाइव। बस यही बोलना चाहूंगा आज का टॉपिक के बारे में और फिल्मों का नजारा के बारे में।
1: बिल्कुल जीतू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तो
0: थैंक यू।
1: तो दोस्तों, जीतू जी ने तो बात की अमर प्रेम के गीत चिंगारी कोई भड़के, और सचमुच में वो जो नज़ारा था नाव में गाते हुए राजेश खन्ना को शूट किया गया था। इसके अलावा मुझे एक और फिल्म याद आ रही है, और वो फिल्म है जॉनी मेरा नाम, जिसका कि जिक्र पारस पंडित जी ने भी किया था, और मैंने कहा था कि मैं अपनी लिस्ट में इस फिल्म की बात करने वाली हूँ। 1970 में रिलीज़ हुई थी ये फिल्म, ये क्राइम एक्शन मूवी थी और विजय आनंद ने डायरेक्ट की थी। दोस्तों, देवानंद के भाई थे विजय आनंद, इसमें प्राण ने उनके भाई का किरदार निभाया और बचपन में वो अलग हो जाते हैं। हेमा मालिनी, जीवन, प्रेमनाथ, पद्मा खन्ना सहित कई कलाकार इसमें नज़र आए हैं। इसमें एक ख़ास बात मैं करने वाली हूँ, वो क्या बात है खास, इसके बारे में एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा है, वो मैं बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल राम और श्याम फिल्म के गीत की फरमाइश की थी हमारे श्याम कुमार चंचल जी ने, वो जिस गीत को सुनना चाहते थे मैं उस गीत को दूसरा गीत सुनवाने वाली हूँ। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले।

0: जी हाँ दोस्तों, 8:14 और 42 सेकंड हो चुके हैं। FM रेनबो छायालोक में हम बात कर रहे हैं फिल्मों के नज़ारों की। देखते हैं हमारे एक दोस्त जुड़ चुके हैं, वो क्या कहते हैं। हेलो,
1: चेक द नंबर।
0: हेलो हेलो,
1: कृपया
0: किसी कारण से वो लाइन पर नहीं है। तो दोस्तों हम कोशिश करेंगे फिर से उनसे जुड़ने की, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे एक फिल्म जिसकी कि मैंने बात अधूरी छोड़ दी थी। जी हाँ, जॉनी मेरा नाम फिल्म का एक नज़ारा यानी एक दृश्य था और उसमें एक बड़ा ही मज़ेदार किस्सा हुआ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: तो दोस्तों बात कर रहे हैं हम जॉनी मेरा नाम फिल्म का एक गीत था ओ मेरे राजा। उस समय में हेमा मालिनी न्यू कमर थी और सुपरस्टार थे देवानंद, और हेमा मालिनी काफ़ी असहज महसूस कर रही थी एक सीन में। दोस्तों हुआ ये कि देवानंद और हेमा मालिनी फिल्म के गाने जिसमें कि वो गाना गाते हैं ओ मेरे राजा की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग नालंदा के नज़दीक बिहार में हो रही थी। एक सीन में देवानंद और हेमा को स्काई ट्रॉली में बैठना था, हेमा को देवानंद की गोद में बैठना था। यही उनके लिए काफ़ी पेचीदा था। ऊपर से उन्हें और ज़्यादा अजीब हो गया जब शूटिंग के दौरान

बीच में लाइट चली गई और दोनों ट्रॉली में ही फंसे रह गए। तब हेमा अपने हंसते हुए उन पलों को याद करते हुए कहती हैं एक इंटरव्यू के दौरान कि शॉट शुरू हुआ और रोप चेयर चल रही थी, लेकिन ठीक बीच में वो रुक गई, बिजली चली गई। तब मैंने कहा, देव साहब, मैं इस तरह से नहीं बैठ सकती, मैं अपना पूरा वजन उनकी गोद में नहीं डालना चाहती थी। तब उन्होंने कहा, ये उनके लिए बहुत अनकंफर्टेबल था। तब देवानंद ने डरी हुई हेमा से ये कहा कि वो नीचे देखने के बजाय उनकी आँखों में देखें, और इस तरह से फिर वो काफ़ी थोड़ी सहज हुई। इससे जुड़ी एक और किस्सा है, वो किस्सा भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन फिलहाल एक गीत आपको सुनवाऊंगी।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: जी हाँ दोस्तों, छह लोक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 2213-1341 पर आप जुड़ सकते हैं और बातें कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो कौन से दृश्य हैं, वो कौन सी कॉमिक टाइमिंग थी फिल्मों की जो आपको पसंद आई, या फिर संवाद। मेरी लिस्ट में ढेर सारे फिल्में लेकर आई हूँ, लेकिन वक्त लग रहा है सिर्फ 35 मिनट हमारे पास है। और इसी सिलसिले में जॉनी मेरा नाम की बात हमने की थी, अब फिलहाल मैं बात करूंगी एक और फिल्म। जी, स्टारर फिल्म थी ज्वेल थीफ, ये आपने सबने देखी होगी और इसके जो गाने थे बहुत फेमस थे और आपके होठों पर जरूर गुनगुनाए होंगे आपने। और उसका एक गीत होठों पे ऐसी बात में दबा के चली आई सभी को बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, आपको पता है क्या, इस फिल्म की वजह से सिक्किम को पहली हिंदी फिल्म मिली और इसी से इंस्पायर होकर के किसी ने, सिक्किम के ही एक नागरिक ने हिंदी फिल्म बनाई थी। कौन सी थी और वो कौन थे जिन्होंने कौन सी फिल्म बनाई थी, ये फिल्म ज्वेल थीफ देखकर। इसके बारे में बात बाद में करूंगी, पहले मैं एक कॉल आ रहा है उसको ले लेती हूँ। हेलो
2: जी, नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं?
2: जी, मैं मोहम्मद नासिर, दरभंगा बिहार से।
1: बिहार से बोल रहे हैं? अरे अभी अभी तो हमने बिहार की बात की।
2: जी मैम, अभी आपने राजगीर की बात की, मैं बिल्कुल राजगीर के करीब में ही रहता हूँ
1: जी।
2: और मैं राजगीर के बारे में भी बताना चाहूंगा। और एक और फिल्म आई थी
1: जी,
2: काला पत्थर, की भी शूटिंग बिहार में ही हुई थी।
1: बिल्कुल, और आप हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी कि कोलकाता के FM रेनबो के साथ आप जुड़े हैं।
2: जी सविता पोदार मैम, थैंक यू, वेरी वेरी गुड इवनिंग
1: जी।
2: जी मैम
1: बताइए।
2: जी मैम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिहार में तो ऐसे कई सारी फिल्में शूटिंग हुई है, लेकिन जैसे इससे पहले आपने बताया जॉनी मेरा नाम, वो भी राजगीर के करीब वहाँ शूटिंग हुई थी। और एक और फिल्म हुई थी काला पत्थर। काला पत्थर की कुछ यादें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसमें अमिताभ बच्चन है, शत्रुघ्न सिन्हा है, शशि कपूर है।

0: है और उसमें एक पत्थर को तोड़ते हुए जो मजदूर की कहानी यहाँ दिखाई गई थी उसमें बहुत हद तक रियलिटी थी, जो जिस चीज को एक फिल्म के जरिए प्रदर्शन किया गया था, फिल्म के जरिए बताया गया था, लोगों को दिखाया गया था। तो मैम उस फिल्म की सारे एक्टर और सारे किरदार मुझे बहुत पसंद आए थे और उस फिल्म के सारे सॉन्ग वो भी मुझे बहुत पसंद आए थे। तो फिल्म तो कई है मैम, लेकिन मेरी यादगार में जो अभी आपने रखा है टॉपिक, उस यादगार के तहत मैं इसी अभी काला पत्थर फिल्म का ही नाम लेना चाहूँगा और मैं इस फिल्म से ही रिलेटेड एक गाना भी पसंद करना चाहूँगा मैम।
1: जरूर, मैं वही बस सुनवाने वाली थी आपको।
0: जी जी,
1: देखिए मैंने आपके दिल की बात समझ ली। आपने अपना क्या नाम बताया?
0: मोहम्मद नासिर, दरभंगा बिहार से मैं।
1: मोहम्मद नासिर जी, नासिर जी मैंने जी। बिल्कुल यही सोचा था कि मैं आपको सरप्राइज दूंगी और आपको ये गीत सुनवाऊंगी काला पत्थर का। तो आपने हमारे साथ अपनी जो अनुभव है वो शेयर किए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए भी शुक्रिया
0: जी। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू
1: जी। नासिर जी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने हमारे साथ अपनी बात शेयर की। और मैं भी झटपट अपनी बात बता देती हूँ, बात को ज़्यादा ना खींचते हुए, कि सिक्किम को पहली मिली थी फिल्म ज्वेल थीफ के थ्रू। जी हाँ, इस फिल्म में ये थी हिंदी फिल्म रोमियो इन सिक्किम। दोस्तों यहाँ पर इस शूटिंग को देख करके इंस्पायर हुए थे सिक्किम के एक नागरिक। ये वहाँ के एक टीचर थे श्याम प्रधान, और उन्होंने इसकी शूटिंग होते हुए देखी तो वो इतने ज़्यादा उससे अट्रैक्ट हुए और इतने ज़्यादा उनको पसंद आया कि वो फिल्म की जब शूटिंग ख़त्म हो गई तो वो बॉम्बे चले गए और उन्होंने एक पटकथा लिख डाली और वहाँ जाकर के बॉम्बे जाकर के उन्होंने शूटिंग के लिए जो अपना सपना पूरा करना था वो वहाँ गए और उन्होंने उनसे बात की और एक जो यूनिट थी उस यूनिट के साथ उन्होंने प्लानिंग शुरू की। श्याम ने ही फिल्म की कहानी लिखी, सारी प्लानिंग की और उस पूरी यूनिट को लेकर फिर वो सिक्किम आ गए और फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी और इस तरह से सिक्किम को मिली थी पहली फिल्म रोमियो इन सिक्किम। और इसके साथ आपको बता दूं कि पूरी सिक्किम में इसकी शूटिंग हुई थी इस फिल्म की। तो आपको यदि सिक्किम देखना हो तो ये फिल्म देख लें, आप सिक्किम घुमाएंगे। मुझे अभी अभी नासिर साहब ने बात की थी काला पत्थर की, तो उनकी पसंदीदा गीत जरूर सुनवाऊंगी।

दोस्तों, बॉलीवुड में कई ऐसी शानदार फिल्में बनी हैं जो बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की हम शक्ल के साथ बनाई गई। जैसे 1980 में रिलीज हुई फिल्म शान को ही लीजिए। इस फिल्म को पहले हेमा मालिनी करने वाली थी, लेकिन किसी कारण से वो इस फिल्म को नहीं कर पाई, तो डायरेक्टर ने उनकी हम शक्ल, उनके जैसी शक्ल सूरत वाली बिंदिया गोस्वामी को लेकर के इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को बना डाला। कुछ ऐसा ही किस्सा 1977 में आई ऋषि कपूर की फिल्म थी, और वो फिल्म आपको याद होगी, हम किसी से कम नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म में जो मुख्य भूमिका एक्ट्रेस की निभाई थी, उनका नाम भी आपको याद होगा। मुझे तो वो बड़ी पसंद थी, मोटी मोटी आंखों वाली लंबी एक बहुत ही प्यारी सी एक्ट्रेस थी, काजल किरण। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स की माने कि तो काजल रेखा से काफ़ी मिलती जुलती थी, और उनकी आंखें मुस्कान रेखा से हूबहू मिलती थी। वह रेखा की तरह बेहद चुलबुली सांवली सलोनी थी। पहली नज़र में ही उनकी झलक रेखा की तरह ही लगती थी। काजल को बैकग्राउंड फिल्मी नहीं था उनका ये बैकग्राउंड, लेकिन कम समय में ही उन्होंने अपनी पहचान बना ली थी। और बस फिर क्या था, काजल किरण को इस फिल्म में ले लिया गया, और हम किसी से कम नहीं के एक एक गीत बेहद सुपरहिट हुआ था।

मनोन 7 FM रेनबो पर आप सुन रहे कार्यक्रम छाया लोक और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सविता। जी हाँ, 8:42:26 हो चुके हैं, थोड़ा ही वक्त हमारे साथ है। तो सुनते हैं अगला गीत फिल्म विवाह से, और बात कर रहे हैं फिल्मों के नज़ारे की, तो थोड़ी सी देर के लिए और बातें करेंगे।

0: जी हाँ दोस्तों, बस अंतिम गीत पेश करने का वक्त आ चुका है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और श्रोता, तो देखिए वो क्या कहते हैं। हेलो
1: हेलो दीदी, नमस्कार। बावड़िया बोल रहे थे, शांतनु घोष बोल जी।
0: शांतनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है छाया लोक में। बताइए कैसे हैं आप सबसे पहले?
1: सब भालो आछी दीदी, हमनी भालो आछी।
0: बिल्कुल मैं अच्छी हूँ। और कार्यक्रम आप एंजॉय कर रहे हैं या नहीं? लेकिन
1: भालो लग जाए, गान भालो लग जाए
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और बताइए क्या कहना चाहते हैं?
1: बोलिए डबल रोल नहीं होते अनुष्ठान
0: जी।
1: गोपी किशन डबल रोल सुनील शेट्टी ओटा भालो लगे खुबी। आर सूर्या वंश आछे अमिताभेर, এই দুটো বই খুবই ভালো লাগে।
0: জি বহুত বহুত শুকরিয়া আপকা। আর হাম আজ বাত করে নজারে ফিল্মো কে বারে মে, তো শান্তনু জি আপকা বহুত বহুত শুকরিয়া।
1: দিদি দিদি, এই গোপী কিষণের গান হয় একটু একটা চালিয়ে দেবেন আপনার পছন্দ মতো।
0: मैं अगले कार्यक्रम में आपका ये फरमाइश पूरी करूंगी, क्योंकि फिलहाल हमारे पास वक्त बिल्कुल कम है। तो शांतनु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों छायालोक में मैं थी आपके साथ सविता, और वक्त ने अब हमसे कहा है कि आपसे ले ली जाए विदा। तो अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे घर खुदा लाया, और खुदा हमें जरूर लेकर आएगा। जाते जाते आपके लिए किशोर कुमार की आवाज में फिल्म जाने मन का गीत मैं सुनवाऊंगी। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जिंदगी को करते रहिए एंजॉय। तो चलते चलते आपके लिए गीत फिल्म जाने मन से। शुभ रात्रि, शबा खैर। 107 FM रेनबो छायालोक में मैं थी सविता। शुभ रात्रि। और हाँ, 29 तारीख को आपके साथ मुलाकात होगी।

आपके लिए हिंदी छायाचित्र गानेर अनुष्ठाने लता मंगेशकर एवं जगजीत सिंह कंठे पर गान वीर जारा फिल्म थेके।